कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कज कज गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरे मंजिल के वो तेरे मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है, मिलने की रात है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी मगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी, जेब जिस दिन भी खाली हुई,

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: आज राम जन्म की बधाई है बधाई है। आज राम जन्म की

0: जाओ रे जाओ रे रुक जाओ रे ओ मुझे बाल माँ अब न सताओ रे
1: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।

0: अब थोड़ा सा मुस्कुराए
1: मुझे पाल गाड़ी पे चलाओ रे चलाओ चलाओ चलाओ रे काहे पिया घबराओ मोरा काहे पिया घबराओ रुक जाओ रे जाओ रे रुक जाओ रे हो मुझे बाल
0: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।

है तुम आज किसी के हो जाओगे मुझे मालूमा अब न सताओगे आओगे आओगे आओगे मुझे मालूमा अब न सताओगे।

मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है घटा बरस जा।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा था। ए घटा